0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নদী বা সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে, যা সর্বোচ্চ 60 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে, যার দরুন সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে 18 আগস্ট পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা গীতাঞ্জলি, একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার বল। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अम्सकरुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

আকাশবাণী কলকাতা সঞ্চয়িতা, এখন রামচরিতমানস, আজ 205 তম পর্ব।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विह्वल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग

किलोमीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। MR अर्जुन और हरिहरन अमसारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
5: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है।

0: ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा

0: में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आज़ादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE, नीट, CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के तीन विषयों

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर दोस्तों ये है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो घड़ी बज चुके हैं 9:10 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके रसधारा। दोस्तों इस कार्यक्रम में मैं रहने वाला हूं 10 बजे तक आपके साथ और लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन गीत आप लोगों के लिए। बादलों की धीमी सी गड़गड़ाहट, हवा में घुली मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों पर आई नई हरियाली और आसमान से बरसती बूंदें, यही तो है सावन। सावन सिर्फ मौसम का नाम नहीं है, ये तो एक एहसास है, ऐसा एहसास जिसमें प्रकृति भी जैसे सज समगर मुस्कुराने लगती है और पुराने गीतों को धुने भी बारिश की बूंदों के साथ दिल तक उतर आती है। तो आइए आज हम भी इस सुहाने मौसम का हाथ थामते हैं और निकल पड़ते हैं सावन और हरियाली की उस खूबसूरत दुनिया में, जहां हरियाली आंखों को सुकून देती है और गीत मन को। और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें सावन की फुहार और दिल की हलचल दोनों साथ साथ महसूस होती है।

फिल्म मंजिल से दोस्तों आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। ये गीत आरडी बर्मन ने सजाया था संगीत से और योगेश ने सवारा था बोल से। वाह क्या गीत था दोस्तों। बारिश की खासियत ही कुछ ऐसी है, बाहर मौसम बदलता है लेकिन उसके साथ साथ हमारे भीतर भी कुछ बदल जाता है। कभी कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाती है, कभी किसी अपने की कमी महसूस होती है और कभी बस मन करता है कि खिड़की के पास बैठकर बारिश को यूं ही देखते रहें। और जब बारिश के साथ चारों तरफ हरियाली हो तो लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपनी तस्वीर पर हरे रंग की सबसे खूबसूरत परत चढ़ा दी हो। लेकिन सावन की कहानी सिर्फ बादलों और हरियाली तक सीमित नहीं है। सावन में झूले हैं, लोकगीत है, हंसी है, शरारत है और कहीं कहीं प्रेम की वो मीठी सी आहट भी है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत।

फिल्म मेरा साया से दोस्तों लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। मदन मोहन का संगीत, राजा मेहदी अली खान के थे बोल। सावन में झूले का जिक्र हो और बचपन की याद ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। वो पेड़ की डाल पर पड़ा झूला, बारिश का इंतजार, दोस्तों के साथ मस्ती और घर से आवाज आती थी बस अब अंदर आ जाओ। समय बदल गया, शहर बदल गए, लेकिन सावन की कुछ यादें ऐसी होती है जो उम्र के साथ पुरानी नहीं होती। आज भी बारिश की पहली बूंद पड़ते ही मन कहीं ना कहीं उसी बचपन की गली में लौट जाते हैं। और हरियाली हरियाली जैसे सावन की पहचान है, सूखे पेड़ फिर से मुस्कुराने लगते हैं, खेतों में रंग लौट आते हैं और धरती जैसे कहती है देखो मैं फिर से सज गई हूँ। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब सुनते हैं एक और यादगार नगमा।

फिल्म लम्हे से दोस्तों लता मंगेशकर इला अरुण की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, शिव हरि का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। क्या खूब मौसम है, बारिश का पानी जब पत्तों पर ठहरता है ना तो हर पत्ता जैसे आईना बन जाता है, और शायद इसलिए सावन हमें एक बात सिखाता है, प्रकृति को देखने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, कभी एक बूंद काफी, कभी एक पत्ता काफी है, कभी हवा का एक झोंका काफी है और कभी कोई पुराना गीत। सावन भी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ी ठंडी, थोड़ी नम और बहुत सारी यादों से भरी हुई। तो चलिए एक और खूबसूरत गीत के नाम करते हैं आज का ये कार्यक्रम।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

दोस्तों लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म मिलन से। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने सजाया था संगीत से और आनंद बख्शी ने संवारा था बोल से। सावन का महीना और पवन का शोर, इससे खूबसूरत मौसम की तस्वीर शायद ही कोई गीत इतनी आसानी से खींच पाए। और दोस्तों हरियाली का मतलब सिर्फ पेड़ों को हरा होना नहीं, हरियाली मतलब उम्मीद। सूखी धरती पर जब पहली हरियाली आती है तो वो हमें बताती है कि बदलाव हमेशा खूबसूरत हो सकता है। जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है, कभी कभी सब कुछ सुना सुना लगता है लेकिन फिर अचानक कोई अच्छी खबर, कोई पुराना दोस्त, कोई प्यारा गीत या कोई खूबसूरत शाम जिंदगी में फिर से रंग भर देती है। और शायद इसी वजह से सावन हर किसी को अपना सा लगता है। अब एक ऐसा गीत जिसमें मौसम भी है, मस्ती भी है और सावन की वो चंचलता भी।

फिल्म बंदनी से आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, कंपोजिशन एस जे बर्मन की, लिरिसिस्ट शैलेंद्र। कुछ गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते, महसूस होते हैं, और सावन के गीतों की यही खूबसूरती है। इनमें बारिश की आवाज भी सुनाई देती है, पत्तों की सरसराहट भी, दूर कहीं बस्ती पायल भी, और कभी किसी अपने की याद भी। तो अगर आज आपके शहर में बारिश हो रही है तो एक बार खिड़की खोलकर जरूर देखिएगा, शायद सामने कोई पेड़ बारिश में भीग रहा हो, शायद हवा में मिट्टी की खुशबू हो, और शायद आपके मन में भी कोई पुराना गीत चुपके से बज रहा हो। बारिश आती रहे, धरती हरी होती रहे, और हमारे जीवन में भी उम्मीद, खुशी और अपनापन यूं ही बरसता रहे, क्योंकि सावन हमें सिर्फ भीगना नहीं सिखाता, सावन हमें फिर से खेलना सिखाता है। दोस्तों, सावन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मौसम किसी एक उम्र का नहीं होता। बचपन में सावन का मतलब होता था स्कूल से छुट्टी, कागज की नाव और बारिश में भीगने की जिद। जवानी में यही सावन किसी की याद लेकर आता है, किसी के साथ भीगने की ख्वाहिश लेकर आता है, और उम्र बढ़ने के साथ शायद सावन हमें थोड़ा और ठहरना सिखाता है। खिड़की के बाहर गिरती बूंदों को देखना, पेड़ों पर चमकती हरियाली को निहारना, और उन गीतों को सुनना जिनमें कभी अपना कोई किस्सा छिपा होता है। बारिश की बूंद भी कमाल की होती है, पता नहीं कब आसमान से उतर कर दिल की किसी पुरानी यादों में भिगो देती है। तो इसी रिमझिम एहसास को एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वक्त हो चुका है 9:38, आपका दोस्त अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है रसधारा आपके अपने चैनल पर, यानी आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर। और आज रसधारा कार्यक्रम दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सावन और हरियाली पर, रहूंगा इस कार्यक्रम में 10 बजे तक आपके साथ, और आप हमारे कार्यक्रम सिर्फ 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर नहीं दोस्तों, आप न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुना रहा हूँ कुछ बेहतरीन गाने सावन पर ही आपके लिए, आइए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से दोस्तों आप सुन रहे थे कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में एक गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत, जावेद अख्तर के बोल। कभी कभी लगता है कि बारिश और संगीत में बहुत गहरी दोस्ती है। दोनों ही बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। बारिश पूछती नहीं कि आप खुश है या उदास, बस बरसती है। और संगीत भी ये नहीं पूछता कि आपके दिल में क्या चल रहा है, वो बस बजता है और धीरे धीरे आपके एहसासों का हिस्सा बन जाता है। शायद इसलिए बारिश के मौसम में पुराने गीत और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और सावन में जब चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है तो लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने लिए एक नई धुन लिख दी हो। अब इसी मौसम को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं क्योंकि

0: सावन सिर्फ शांति और रोमांस नहीं है, इसमें मस्ती भी है, उमंग भी है और बारिश में भीगने की वो बचपन वाली खुशी भी है।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना

फिल्म नमक हलाल से दोस्तों आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में गीत। बप्पी लहरी ने सजाया था संगीत से और अनजान ने सवारा था बोल से। क्या बात है, बारिश में भीगने का अपना ही मजा है, लेकिन आज के दौर में शायद बारिश को महसूस करने का तरीका भी बदल गया है। पहले लोग बारिश आते ही छत पर चले जाते थे, अब मोबाइल निकाल लेते हैं। पहले बारिश की बूंदें गिनी जाती थी, अब उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं। लेकिन एक चीज आज भी वैसा ही है, बारिश होते ही मन खुश हो जाता है, और अगर बारिश के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, अदरक वाली चाय और कोई अपना साथ हो तो फिर मौसम को खूबसूरत बनने के लिए और क्या चाहिए। हालांकि आज हम खाने की बात कम करेंगे और हरियाली की बात ज्यादा, क्योंकि सावन आते ही धरती का रंग बदल जाता है, पेड़ पौधे जैसे महीनों की थकान उतार कर फिर से जवान हो जाते हैं, खेतों में हरियाली फैलती है, रास्तों के किनारे पेड़ चमकने लगते हैं और दूर तक फैली प्रकृति देखकर मन कह उठता है यही तो असली खूबसूरती है। और इसी धरती की हरियाली को सलाम करता हुआ एक और शानदार गीत, और दोस्तों ये होगा हमारे कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित लेगा इजाजत थोड़ी देर के लिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा फिर संचयिता चैनल पर ठीक 12 बजे कार्यक्रम सुर भी लेकर, और अगला कार्यक्रम होगा हमारे इस गीत के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से

0: स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप तंत्र के माध्यम से किया गया है। उधर झारखंड में JSSC परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। पवित्र सावन माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। गंभीर रूप से घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जिला सदर अस्पताल में जारी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ थाने के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत में फैल गई। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:16 और 8 सेकंड हो रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल संचेता पर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, और मैं हूं आपकी हरदिलजीज दोस्त शाइस्ता नाज। आप सभी सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। सामीन ग्राम, सबसे पहले पेश है आईना। आईना में आज आप समाप्त फरमाएंगे अमृत लाल नागर पर गुफ्तगू। दोस्तों, आज के इस आईना में हम याद कर रहे हैं हिंदुस्तानी अदब की एक ऐसी मुमताज शख्सियत को जिन्होंने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तानी माशरे, उसकी तहजीब, अवामी जिंदगी, रस्म और रवाज और इंसानी जज्बात की नहायत खूबसूरत अक्कासी की। हम बात कर रहे हैं मारूफ हिंदी अदब के मशहूर शायर अमृत लाल नागर की, जिनका यौम पैदाइश हर साल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। अमृत लाल नागर 17 अगस्त 1916 को आगरा में पैदा हुए। बाद में लखनऊ उनकी अदबी शख्सियत और तख्लीकी जिंदगी का अहम मरकज बन गया। वो बुनियादी तौर पर नावल निगार, अफसाना निगार, ड्रामा निगार और सहाफ़ी थे। उनकी अदबी जिंदगी का सबसे नुमाया वस्फ ये था कि उन्होंने आम इंसान की जिंदगी को अपनी तख्लीकात का मौसू बनाया। अमृत लाल नागर का ताल्लुक उस दौर से था जब हिंदुस्तानी समाजी, सियासी और तहजीबी एतबार से बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहा था। आज़ादी की तहरीक, बदलता हुआ मुआशरा, शहरी जिंदगी, गुरबत, तबकाती फ़र्क, मजहबी और तहजीबी मेल जोल और इंसानी रिश्ते, ये सब उनके मुशाहदे का हिस्सा थे। यही वजह है कि उनका अदब महज कहानी नहीं बल्कि अपने अहद की एक जीती जागती तस्वीर महसूस होती है। उनकी ज़बान में हिंदुस्तानी ज़िंदगी की खुशबू महसूस होती है। वो किरदारों को सिर्फ अच्छा या बुरा बनाकर पेश नहीं करते बल्कि उनके अंदर मौजूद इंसानी कमज़ोरियों, ख्वाहिशात, महरूमियों और उम्मीदों को भी समझने की कोशिश करते हैं। अमृत लाल नागर के अहम नावलों में बूंद और समंदर, मांस का बंस, गुंजन, नर्क, शतरंज के मोहरे और अमृत और विष काबिले जिक्र हैं। इन तख्लीकात में कहीं तारीख के दरीचे खुलते हैं तो कहीं समाजी जिंदगी के मसाइल सामने आते हैं, और कहीं इंसानी किरदार अपनी पूरी पेचीदगियों के साथ हमारे सामने आ जाते हैं। उनका मशहूर नावल मांस का बंस गोस्वामी तुलसीदास की जिंदगी और अहदे से मुतालिक है। इस नावल में तारीख, अदब, मजहब और इंसानी जज्बात को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश नजर आती है। इस तरह हिंदुस्तान के समाज में एक अहम तबके की ज़िंदगी और मसाइल को मौजू बनाया है। नागर जी की ख़ास बात ये थी कि वो माशरे के उन लोगों को भी अपनी तख्लीकात में जगह देते थे जहां अक्सर तारीख और अदब के मरकजी सफ़ात पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सामीन, अमृत लाल नागर सिर्फ एक अदीब नहीं थे, वह एक गहरे मुशाहदे करने वाले इंसान भी थे। वह हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों के बाहमी मेल जोल और अवामी ज़िंदगी की रंगारंग से बहुत मुतासर थे। उनकी तहरीरों में लखनऊ की तहजीबी फ़ज़ा, बोलचाल की ज़बान, मुहावरे, लोक रवायात और अवामी किरदार ख़ास अहमियत रखते हैं। यही चीज़ उनके अदब को आम कारी के करीब ले आती है। उन्होंने तारीख को भी महज माजी के तौर पर नहीं देखा। उनके लिए तारीख मौजूदा ज़िंदगी को समझने का एक ज़रिया थी। वो तारीख़ी वाक़यात और किरदारों के ज़रिया इंसान की फितरत, माशरे की साख्त और तहजीब के सफ़र को समझने की कोशिश करते थे। उनकी अदबी खदमात के तराफ़ में उन्हें मुतअद्दिद इज़ाज़ात से नवाजा गया। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी हासिल हुआ। उनकी अदबी खदमात में उन्हें हिंदुस्तान की अदब के अहम तरीन तख्लीकारों में शामिल कर दिया। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अमृत लाल नागर का ताल्लुक सिर्फ किताबों की दुनिया में नहीं था। उन्होंने सहाफ़त, रेडियो और दीगर ज़राए इब्लाग से भी वापस्तगी रखी। इस तरह उनकी तख्लीकी सलाहियतें वसी पैमाने पर लोगों तक पहुँची। उनकी शख्सियत और फ़न का सबसे अहम पैगाम शायद यही है कि अदब को

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनुपमा डेविस पांडे की आवाज़ में यह नगमा। फिल्म का नाम था चांदनी, कलाम था आनंद बख्शी का और मौसीकी से सजाया था शिव हरी ने। दोस्तों, वक्त हो चला है अब अगले हिस्से का, तो सुनते हैं मंजरनामा। मंजरनामा में पेश है मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर गुफ्तगु, जो अकलियतों के लिए बेहद मुफीद है। तालीम सिर्फ किताबें पढ़ने या इम्तिहान पास करने का नाम नहीं, बल्कि तालीम इंसान को अपने ख्वाब देखने, उन्हें समझने और फिर उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला देती है। लेकिन हमारे मुआशरे में आज भी बहुत से ऐसे बासलाहियत तलबा और तालबात मौजूद हैं जो माली मुश्किलात की वजह से अपनी तालीम जारी रखने में दुश्वारी महसूस करते हैं।

दोस्तों, भी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम था फूल और कांटे। कलाम था रान मलिक का और मस्क से सजाया था नदीम श्रवण ने। दोस्तों, वक्त हो चला है अगले हिस्से का, पर सुनते हैं एक हफ्त रोज़ा प्रोग्राम तख्लीक कुदरत। कुदरत की तख्लीक का हर रंग अपने अंदर एक रास, एक खूबसूरती और एक फ़ायदा लिए हुई है। कहीं फूलों की खुशबू दिल को सरूर करती है, कहीं सब्ज़ा आँखों को ठंडक पहुँचाता है और कहीं फल अपनी लज्जत के साथ इंसानी सेहत के लिए नेमत बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खुश जायका, खुशबूदार और बेहद मुफीद फल की, जिसे आम तौर पर हम अमरूद के नाम से जानते हैं। अमरूद बज़ाहिर एक सादा सा फल है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो उसकी साख्ता, जायका, खुशबू, खसाइयत और इस्तेमालात इसे दूसरे फलों से मुनफरिद बनाती हैं। यही तो कुदरत की कारीगरी है कि एक मामूली दिखाई देने वाली चीज़ में भी बेशुमार खूबियाँ पोशीदा होती हैं। अमरूद का दरख्त न

नस्बतन कम देखभाल में भी फल देने की सलाहियत रखता है। इसका फल अमूमन सब्ज रंग का होता है और पकने के बाद उसकी कुछ अकसाम सदा या हल्की सब्जी मायल रंग अख्तियार कर लेती हैं। अमरूद को काटें तो उसके अंदर सफ़ेद या गुलाबी गुदा और छोटे छोटे बीज नजर आते हैं। कुछ अमरूद खुदरे खट्टा करकुरा और खुशबूदार, जबकि पका हुआ अमरूद नरम मीठा और रसदार होता है। नमक और काली मिर्च के साथ अमरूद का जायका तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पर बहुत पसंद किया जाता है। सबसे बड़ी इंफरादियत अमरूद की इसकी गज़ाइत में पोशीदा है। अमरूद विटामिन सी का अच्छा जरिया समझा जाता है। इसके अलावा इसमें गज़ाई फाइबर और मुख्तलिफ विटामिन और मादनी अज़ा पाए जाते हैं। फाइबर हमारी रोज़मर्रा ग़ज़ा का अहम हिस्सा है और मतवाजन खुराक में फलों और सब्जियों को शमूलियत मजमूई सेहत के लिए मुफीद समझी जाती है। अमरूद की एक ख़ास बात यह भी है कि इसे आम तौर पर पूरा खाया जा सकता है। बहुत से लोग इसका छिलका उतारे बगैर ही खाना पसंद करते हैं। अलबत्त फल को अच्छी तरह धोना ज़रूरी है। कुदरत ने अमरूद को सिर्फ जायके तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसके इस्तेमाल के कई तरीके भी पैदा किए हैं। अमरूद को बराह रास्त फल के तौर पर खाया जाता है। इसका शेक बनाया जा सकता है, जूस तैयार किया जा सकता है और उससे जेली, जैम और मुरब्बा भी तैयार किया जा सकता है। बाज़ इलाकों में अमरूद की चटनी भी बनाई जाती है। यूं तो एक ही फल हमारे खुराक में कई शक्लों में शामिल हो जाता है। अमरूद की खुशबू और जायका बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको अपनी तरफ मतवज्जा करता है। दोस्तों, अमरूद के अंदर कुछ खास सलाहियत होती है और बहुत ही ज़रूर इसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे इफादियत हैं। इफादियत बहुत सी नेमतों का हामिल है। तो दोस्तों, ये था अमरूद, कुदरत के नुस्खे, कुदरत के तखली के कुदरत, जिसमें आप अमरूद की इफादियत और उसके इस्तेमाल से वावस्ता हो रहे थे। दोस्तों, चलिए अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये नगमा फिल्म का नाम था प्यारा प्यासा सावन, कलाम था संतोष आनंद का और मौसीकी से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों वक्त तो चला है आखिरी नगमे का, चलिए सुनते हैं एक इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, टिप टिप बरसा पानी।

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर दोस्तों, यह है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो घड़ी बच चुके हैं 12 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके सुरभि। और सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले चर्चा है, और आज चर्चा में दोस्तों हम बात करेंगे बर्थ एनिवर्सरी अमृत लाल नागर के बारे में। अमृत लाल नागर हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश में गुजराती नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। श्री अमृतलाल नागर के पिता का नाम राजा राम नागर था। आपके पितामह शिवराम नागर 1895 से लखनऊ आकर बस गए थे। आपकी पढ़ाई हाई स्कूल तक ही हुई, फिर स्वाध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व व

समाजशास्त्र का अध्ययन किया। बाद में हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, अंग्रेजी पर अधिकार, पहले नौकरी, फिर स्वतंत्र लेखन, फिल्म लेखन का खासा काम किया। चकल्लस का संपादन भी किया। आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे। 1932 में निरंतर लेखन किया। शुरुआत में मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखी। तस्लीम लखनवी नाम से व्यंगपूर्ण स्केच व निबंध लिखे, तो कहानियां के लिए अमृतलाल नागर मूल नाम रखा। अमृत की भाषा सहज सरल दृढ़ के अनुकूल है। मुहावरे, लोकोक्तियों, विदेशी तथा देशज शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया गया। भावनात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। उपन्यास महाकाल 1947-1970 से भूख शीर्षक प्रकाशित। सेठ माकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960। ये तमिल महाकाव्य शिल्पदिकराम दुख की लड़ी के आधार पर लिखा माना जाता है। अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा निमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1973, न्याचियो बहुत गोपाल 1978, खंजन न्यान्या 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और पीढ़िया 1990। कहानी संग्रह वाटिका 1935, अवशेष 1937, तुलाराम शास्त्री 1941, आदमी नहीं नहीं 1947, पांचवा दस्ता 1948, एक दिल हजार दास्ता 1955, एटम बम 1956, पीपल की परी 1963, कालदंड की चोरी 1963, मेरी प्रिया कहानियां 1970, पांचवा दस्ता और सात कहानियां 1970, भारत पुत्र नौरंगी लाल 1972, सिकंदर हार गया 1982, एक दिल हजार अफसाने 1986, लगभग सभी कहानियों का संकलन। उनकी नाटक की बात करें तो युग अवतार 1956, बात की बात 1974, चंदन वन 1974, चकसरदार सीढ़ियां और अंधेरा 1977, उतार चढ़ाव 1977, नुक्कड़ पर 1981, चढ़त ना दूजो रंग 1982। व्यंग की बात करें तो नवाबी मनसद 1939, सेठ बाकेमल 1944, कृपया दाएं चलिए 1973, हम फिदाई लखनऊ 1973, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं 1985, चकल्लस 1966, उपलब्ध स्फुट हास्य व्यंग रचनाओं का संकलन। अन्य कृतियों की अगर बात करें दोस्तों, गदर के फूल 1957 से 1857 की इतिहास प्रसिद्ध क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण, ये कोठेवालियां 1960, समस्याओं पर एक मौलिक एवं अनूठा सामाजिक सर्वेक्षण, जिनके साथ जिया 1973, साहित्यकारों के संस्मरण, चैतन्य महाप्रभु 1978, आत्मापरक लेखों का संकलन, टुकड़े टुकड़े दास्ता 1986, आत्मापरक लेखों का संकलन, साहित्य और संस्कृति 1986, साहित्य एवं ललित निबंधों का संकलन, अमृत मंथन 1991, अमृतलाल नगर के साक्षात्कार संपादक डॉक्टर शरद नागर एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी। अमृतलाल नागर रचना वाली संपादक डॉक्टर शरद नागर 12 खंडों में 1992, फिल्मर क्षेत्र रंग क्षेत्र 2003, नागरजी के फिल्मी रंगमंच तथा रेडियो नाटक संबंधी लेख का संकलन, अत्र कुशल तत्रास्त्रु 2004, नागराजी एवं रामविलाम शर्मा के व्यक्तिगत पत्राचार का संग्रह। बाल साहित्य की बात करें तो नटखट चाची 1941, निंदिया आजा 1950, बजरंगी नौरंगी 1969, बजरंगी पहलवान 1969, बाल महाभारत 1971, इतिहास झरोखी 1970, बजरंग स्मार्ट डगलोर के पंदे में 1972, हमारे युग निर्माता 1982, छह युग निर्माता 1982, अकल बड़ी या भैंस 1982, आओ बच्चों नाटक लिखे 1988, सतखंडी हवेली का मालिक 1990, फूलों की घाटी 1997, बाल दिवस केरल 1997, सात भाई चंपा 1998, इकलौता लाल 2001, साझा 2001, सोमू का जन्मदिन 2001, शांति निकेतन के संत का बचपन 2001, त्रिलोक विजय 2001, अनुवाद बिसाती 1935, मोपासा की कहानियां, प्रेम की प्याकस 1937, गुस्तामव प्लाबेर के उपन्यास मादम बोवरी का संक्षिप्त भावनुवाद, काला पुरोहित 1939, एंटन चेखव की कहानियां, आंखों देखा गदर 1948, विष्णु भट्ट गोडसे की मराठी पुस्तक माझा प्रवास का अनुवाद,
5-2 पकड़ 1900

55 कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी केतन गुजराती नाटक, सरस्वत 1956 मामा वेरकर के मराठी नाटक का अनुवाद। संपादन की बात करें तो सुनीति 1934 सिनेमा समाचार 1935 से 1936, अल्लाह कह दे 20 दिसंबर 1937 से 3 जनवरी 1938 साप्ताहिक, चकल्लस फरवरी 1938 से 3 अक्टूबर 1938 साप्ताहिक, नया साहित्य 1945 सनीचर 1949 प्रसाद 1953 से 1954 मासिक पत्रों का संपादन किया, संस्मरण गदर के फूल ये कोटेवालिया जिनके साथ जिया। अन्य उनके पुस्तकें हैं मुपासा, चेखफ, लाबेयर के एम मुंशी, मामा वरेरकर की रचनाओं के अनुवाद व विपुल बाल साहित्य, नाटक, रेडियो नाटक व फीचर भी अनेक 1940 से 1947 तक, फिल्म सिनेरियो का लेखन कार्य किया 1953 से 1956 तक, आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर रहे। अगर उनकी पुरस्कार की बात करें दोस्तों, बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का विक्रम संवत 2015 से 2018 तक का, बटुक प्रसाद पुरस्कार एवं सुधाकर पदक, सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1962 से 63 के प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विष पर वर्ष 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, अमृत और विष पर वर्ष 1970 का सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मानस का हंस पर मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद का वर्ष 1972 का अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार, मानस का हंस पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1973 से 74 का राज्य साहित्यिक पुरस्कार, हिंदी रंगमंच की विशिष्ट सेवा हेतु सन 1970 से 71 का उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, खंजन नयन पर भारतीय भाषा कलकत्ता का वर्ष 1984 का नथमल भुवालका पुरस्कार, वर्ष 1985 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारतीय सम्मान 22 दिसंबर 1989 को प्रदत्त, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि से वशीभूत। तो दोस्तों ये तो थी चर्चा है अमृतलाल नागर पर। अब बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम होगा पहल, और पहल में दोस्तों हम बात करेंगे ICDS सर्विस फॉर माइनॉरिटीज के बारे में। समेकित बाल विकास सेवा। कर्नाटक में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS कार्यक्रम ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। शुरुआत में लागू करने वाले राज्यों में शामिल कर्नाटक से आगे बढ़ते हुए ये विश्व का सबसे बड़ा सामुदायिक स्तर पर आधारित प्रारंभिक बाल विकास कार्यक्रम बन गया। ICDS एक केंद्रीय प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MOWCD के अंतर्गत संचालित है, और इसका उद्देश्य 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करने वाली स्त्रियों के पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक शिक्षा के परिणामों को सुधार करना है। ICDS का अब मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संशोधित और समाहित किया गया है। बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार कर होना है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना, बाल मृत्यु दर, रोग प्रवृत्ति, कुपोषण और विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना, बाल विकास के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना। ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। महत्व ICDS प्रारंभिक बाल विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुपोषण से निपटता है और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है। ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करता है, मृत्यु दर को कम करता है तथा मातृ स्वास्थ्य का समर्थन करता है। सामुदायिक स्तर पर पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को एकीकृत करके ये मानव संस्थान को मजबूत करता है, पीढ़ीगत गरीबी को कम करता है तथा महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 वित्त वर्ष 2021-22 में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 को भारत के प्रमुख एकीकृत पोषण समर्थन कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। यह ICDS पोषण अभियान किशोरी बालिकाओं के लिए योजना और राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना जैसी प्रमुख बाल एवं मातृ कल्याण योजनाओं की एकीकृत करता है। ये कार्यक्रम 15वीं वित्त आयोग की अवधि 2021-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत हुआ है, और इसका उद्देश्य पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल तथा महिलाओं व बच्चों के लिए समग्र समर्थन को मजबूत करना है।
प्रमुख कार्य क्षेत्र है आकांक्षी जिलों और पूर्व

उत्तर में बच्चे 6 महीने से 6 वर्ष गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों 14 से 18 वर्ष के लिए पूरक पोषण 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक गतिविधियां आधुनिक सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना का उन्नयन पोषण अभियान कुपोषण मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय अभिसरण मिशन विशेष फोकस क्षेत्र मातृ पोषण और शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार IVCF में सुधार साथ ही आयुष स्वास्थ्य पद्धतियों द्वारा समर्थित SAM और MEM के लिए उपचार प्रोटोकॉल शुरू करना ये योजना पोषण ट्रैकर के माध्यम से वास्तविक समय पोषण निगरानी को मजबूत करती है तथा किशोरियों के लिए योजना SAG के माध्यम से किशोरियों के पोषण की प्राथमिकता देती है जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को लक्षित करती है। ICDS इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एक केंद्र प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम है जो बच्चे 0 से 6 वर्ष और गर्भवती धाती माताओं के लिए एकीकृत सेवाओं का पैकेज प्रदान करता है। पूरक पोषण प्री स्कूल शिक्षा टीकाकरण स्वास्थ्य जांच रेफरल सेवाएं तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा ये पुनर्गठित अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें ICDS पोषण अभियान किशोरियों की योजना और राष्ट्रीय क्रैच योजना को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य पोषण प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा ECCE आंगनवाड़ी अवसंरचना और किशोर पोषण को सुदृढ़ करना है जिसे अभिसरण और डिजिटल मॉनिटरिंग पोषण ट्रैकर के माध्यम से लागू किया गया है। पोषण ट्रैकर पोषण संकेतकों को रियल टाइम मॉनिटरिंग लाभार्थियों को ट्रैकिंग और RCS डेटा के साथ अभिसरण को सक्षम बनाता है जिससे लक्ष्य निर्धारण सेवा प्रद्यागी और जवाबदेही में सुधार होता है। तो दोस्तों ये तो थी पहल, अब बढ़ेंगे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर, सुन लेंगे एक फिल्मी गीत और इसी गीत के साथ दोस्तों आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद, ये तो रहा वादा मेरा। तब तक के लिए नमस्कार और अगला कार्यक्रम होगा हमारे इस गीत के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था।

0: यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
1: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के 11 स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The government will soon constitute a high-powered committee on banking in achieving the vision of a Vikasit Bharat. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said this after inaugurating the 2-day public sector bank conclave in New Delhi today. She added that the committee will decide the future course of banking reforms by taking up issues and recommendations. Ms. Sitharaman expressed hope that the outcomes of the discussions will provide valuable substantive inputs to the committee as it formulates its recommendations on the future role of banks. She noted that Indian banks are in a position of strength with non-performing assets at their lowest ever levels, providing a strong foundation for further reforms.
3: On the basis of a well-researched set of documents which have been shared with you in advance, will hopefully provide that substantive meat for the committee to also look at. So the committee would probably have that material before them, even as they deliberate. And even as they deliberate, to give us their thoughts and also the recommendations which will help us to clearly understand where the committee wants India to go towards Vikasit Bharat and in that the role of banks.
2: The BJP has criticized senior Congress leader P. Chidambaram over his statement, expressing pride in being a Dimagi Naxal. Briefing the media in New Delhi today, BJP national spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi claimed that the Naxalism that Congress governments failed to eliminate was decisively brought under control under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He also cited former Prime Minister Dr. Manmohan Singh's statement of April 13, 2006, that the Naxal threat was the biggest threat to India's internal security in its history. 12 people have been killed in 2 separate incidents of a stampede in Bihar and fire in West Bengal. In Bihar's Lakhisarai district, 7 women devotees died in a stampede at the Ashok Dham temple today. On the occasion of the third Monday of the holy month of Sawan, a large crowd

0: सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जन भागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।

0: जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोकधाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खंभे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ।
1: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोकधाम हॉल्ट तक, तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रूपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
3: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
4: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवारूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष

2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया।

0: में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন খেয়াল শিল্পী অঞ্জনা কুশারী, রাগ মধুবন্তী, তবলায় সুমীরাচার্য, হারমোনিয়ামে হিরণময় মিত্র।

0: पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति के सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उनके हमलों की साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले में रामगढ़ वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद एक व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। यह अभियान संदिग्ध गतिविधियों के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जर्नल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम GAASI के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9BC गार्डियन विमान 30 महीने की लीज पर लिए जाएंगे। ये विमान अत्यधिक ऊंचाई पर लंबी अवधि तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इनका उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के लिए किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसार तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारण का अभी पता चल नहीं पाया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कल रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तूतू खालिनी रोड के पास एक टैंकर और कार की टक्कर में हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और टैंकर चालक से पूछताछ जारी है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका अभी भारत से 178 रन पीछे है। हॉकी विश्वकप में भारतीय पुरुष टीम आज अपने दूसरे पूल डी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज नई दिल्ली में शुरू हो गई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकर्णन की भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी पूनम के संग। उर्वशी के अंतर्गत झरोखा और झरोखा के अंतर्गत आज मैं बात करने वाली हूँ बिरहा के बारे में।

0: लोक संगीत किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, उसके इतिहास, जनजीवन और भावनाओं का जीवंत दस्तावेज होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी अंचल में बिरहा लोक गायन की एक अत्यंत समृद्ध, लोकप्रिय और ऊर्जावान शैली है। जब कोई बिरहा कलाकार गया जाने के प्रसंग को अपने गीत का विषय बनाता है तो उसमें धार्मिक आस्था, पारिवारिक दायित्व, वियोग और भारतीय संस्कृति के गहरे रंग एक साथ घुल मिल जाते हैं। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की खूबसूरत आवाज में याद किया दिल ने कहां हो तुम। और आज झरोखा के अंतर्गत बातें हो रही हैं बिरहा के बारे में। बिरहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जैसे कि गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर और बिहार के शाहबाद क्षेत्र, भोजपुर, बक्सर, रोहतास में अत्यधिक लोकप्रिय है। बिरहा शब्द वियोग से निकला है। इसमें जीवन के दुखों, प्रेम के विच्छेद, समाज की सच्चाइयों और पौराणिक या ऐतिहासिक कथाओं का सजीव वर्णन किया जाता है। बिरहा गायन की शैली बड़ी ही ओजस्वी होती है। इसमें मुख्य गायक यानी कि बिरहा सम्राट और उसके साथियों यानी कि समदौलियों या फिर टेरने वाले के बीच सवाल जवाब और टेर यानी कि ऊंची आवाज में गूंज के साथ गीत आगे बढ़ता है। और भी बातें हैं साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथियों ही बने रहिए।

5:38। हेमंत कुमार की खूबसूरत आवाज में फिल्म खामोशी से तुम पुकार लो। बातें हो रही हैं बिरहा के बारे में झरोखा के अंतर्गत। बिहार का गया शहर हिंदू धर्म में मोक्ष और पिंडदान की भूमि के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर में पितरों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति के लिए पिंडदान करने का विशेष विधान है। उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण अंचल में जब कोई व्यक्ति अपने मृत परिजनों की मुक्ति के लिए गया धाम की यात्रा पर जाने की तैयारी करता है तो उस विदाई यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान को प्रसंग के आधार पर बनाए जाने वाले गीतों को गाया जाने वाला बिरहा या फिर गाया यात्रा का बिरहा कहा जाता है। बातें और भी हैं साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

बिरहा गायन की शैली बेहद अनूठी और रोमांचक होती है। इसमें मुख्य गायक, जिसे बिरहा सम्राट या फिर गवैया भी कहा जाता है, और कुछ सहगायक होते हैं जो ढोलक, मंजीरे और अपनी गूंजती हुई ऊंची आवाज के साथ समा बांध देते हैं। बिरहा की एक ऐसी विशेषता है कि ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये आम जनमानस के सुख दुखों, संघर्षों और उनकी सांस्कृतिक पहचान का जीवंत दस्तावेज भी है। आज भी आधुनिकता के दौर में लोक कलाकारों के माध्यम से बिरहा अपनी माटी की खुशबू को संजे हुए जीवित है। फिलहाल 5:47 और वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

5:51 मिनट और थोड़ी देर के लिए दीजिए पूनम को आज्ञा, लौट कर फिर आऊंगी आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम हिंदी वार्ता। वक्त होगा 6:10 मिनट, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस

0: को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री BL संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। UPI से संचालित पोस ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में UPI सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges, and CCTV

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता पूनम के संग, जिसके अंतर्गत आज मैं बात करने वाली हूं सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दूसरा दशक। आज

युग गतिशीलता और तीव्र विकास का युग है। मनुष्य ने दूरियों को पाटने के लिए विज्ञान और तकनीक के माध्यम से परिवहन के अनगिनत साधन विकसित किए हैं। सड़क मार्ग हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की धड़कन बन चुका है। पक्की सड़कें, तेज रफ्तार वाहन और सुगम यातायात ने हमारे जीवन को अभूतपूर्व गतिशीलता प्रदान की है। लेकिन इस विकास का एक डरावना और दुखद पहलू भी है, और वो है सड़क दुर्घटनाएं। आज विश्व भर में सड़क हादसे किसी महामारी की तरह फैल चुके हैं, जो हर दिन हजारों हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ देते हैं। ये केवल किसी एक देश या समाज की समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक संकट है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इस कड़ी में सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दूसरा दशक की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम से कम 50% तक कम करना है। इस वैश्विक अभियान, इसके उद्देश्यों, चुनौतियों और हमारी सामूहिक जिम्मेदारियों से संबंधित बातचीत आप सबके साथ आज मैं करना चाहती हूं। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े इतने डरावने हैं कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवर्ष दुनिया भर में लाखों लोग सड़क हादसों के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं, और करोड़ों लोग आजीवन विकलांगता या फिर गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात का शिकार होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले और घायल होने वाले लोगों में सबसे बड़ा हिस्सा 15 से 29 वर्ष के युवाओं का होता है। किसी भी देश के जनसांख्यिकी लाभांश और भविष्य के आर्थिक विकास के लिए एक अपूरणीय क्षति है। विकासशील देशों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान उनके कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 3-5% तक होता है। इसमें चिकित्सा खर्च, उत्पादकता का हाश और परिवारों का बिखरना शामिल है। यहां मैं अगर भारत की स्थिति की बात करूं तो भारत जैसे विकासशील देश में, जहां वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, सड़क सुरक्षा एक राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। देश में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 1.5 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ओवर स्पीडिंग यानी कि तेज रफ्तार, नशे में गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट या हेलमेट का उपयोग न करना और यातायात के नियमों की अनदेखी इन मौतों के सबसे बड़े कारण हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार वर्ष 2011 से 2020 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का पहला दशक घोषित किया था। इससे पहले दशक का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना और उसमें कमी लाना था। हालांकि पहले दशक के दौरान कई देशों में राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनी, कानूनों को सख्त किया गया और जागरूकता अभियान चलाए गए, लेकिन वैश्विक स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका। इसका मुख्य कारण था कार्यान्वयन में ढिलाई, बुनियादी ढांचे की कमी, वित्त पोषण का अभाव और सड़क सुरक्षा को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। इन कमियों और सीख से सबक लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अधिक दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई के दूसरे दशक की रूपरेखा तैयार की। अगस्त 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दूसरा दशक 2021 से 2030 तक का शुभारंभ किया गया। इस दूसरे दशक का सबसे प्रमुख और महत्वाकांक्षी लक्ष्य

0: वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों में कम से कम 50% की कटौती करना है। यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर लक्ष्य 3.6 से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। WHO और संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय आयोगों द्वारा विकसित वैश्विक योजना इस बात पर जोर देती है कि क्या करना है, कैसे करना है और किसकी जिम्मेदारी है। यह योजना 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक व्यापक सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण अपनाती है। सुरक्षित प्रबंधन, जिसके अंतर्गत मजबूत नीतियां, संस्थागत ढांचे का निर्माण और निरंतर निगरानी आती है। सुरक्षित सड़कें और गतिशीलता, इसके अंतर्गत सड़कों का ऐसा डिजाइन तैयार करना जो पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन के अनुकूल हों। सुरक्षित वाहन, वाहनों में एयरबैग, ABS, क्रैश टेस्ट मानकों और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को अनिवार्य बनाना। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता, जिसके अंतर्गत नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता, अनुशासन और नियमों का कड़ाई से पालन। दुर्घटना के बाद की प्रतिक्रिया क्या हो, दुर्घटना पीड़ितों को समय पर आपातकालीन चिकित्सा सेवा में और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना। पारंपरिक रूप से सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल वाहन चालक या पैदल यात्री पर डाल दी जाती थी। यदि कोई दुर्घटना होती है तो मानवीय भूल को उसका एकमात्र कारण मान लिया जाता था, परंतु कार्रवाई के दूसरे दशक में इस दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया गया है। सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण ये स्वीकार करता है कि मनुष्य गलतियां कर सकता है, लेकिन इन गलतियों की सजा मौत या आजीवन विकलांगता के रूप में नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सड़क प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति मानवीय भूलवश गलती कर भी दे तो भी दुर्घटना घातक ना हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई चालक गलती से तेज गति से गाड़ी चला रहा है या उसका ध्यान भटक गया है तो सड़क के किनारे क्रैश बैरियर, स्पीड ब्रेकर, उचित लाइटिंग और वाहनों के स्वतः ब्रेकिंग सिस्टम जैसी तकनीकें उसे बचा सकें। भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां सड़कों का एक अथाह जाल बिछा है और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, कार्रवाई का दूसरा दशक बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार ने वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं ताकि सड़क सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सके। आइए इस दूसरे दशक में हम सभी ये संकल्प लें कि हम सुरक्षित चलें, सुरक्षित घर लौटें। सड़क पर अनुशासन को अपनाकर ही हम एक सभ्य, सुरक्षित और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी वार्ता पूनम के संग।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। विकसित भारतस्य दिशि सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंकेषु तत्सम्बद्ध परिष्काराणाम् अथ भाविस्वरूपस्य च समीक्षायै प्रशासनम् उच्चस्तरीय समितेः निर्माणं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य उक्तवान् यत् मोदी प्रशासनेन स्वातन्त्र्यदिवसात् पूर्वम् ISI इत्यनेन समर्थितं शाहजाद भट्टी आतंकी जालं ध्वस्तीकृतम्। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी निर्धारित परीक्षा कार्य विधेः कठोरतया अनुपालनं सुनिश्चेतुम् अधिकारिभिः सह उपवेशनं कृत्वा निर्देशा

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलगुलशन पूनम के संग।

गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलिल चौधरी, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे, और फिल्म का नाम मधुमति। अगला नगमा बेहद खूबसूरत लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाज में। सुनते रहिए, साथ रहिए, और अगले 7 बजे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

सोनू निगम की खूबसूरत आवाज में फिल्म अग्निपथ से अभी मुझ में कहीं। फिलहाल एक खूबसूरत गजल सलमा आगा की आवाज में सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन

0: 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of the Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges, and CCTV cameras used for espionage, were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister for Electronics and Information Technology

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण पूनम के संग दर्पण के अंतर्गत एक नज़र, और एक नज़र के अंतर्गत मैं बात करने वाली हूँ नाग पंचमी के बारे में, क्योंकि आज है नाग पंचमी। हिंदू धर्म के प्रमुख और प्राचीन त्योहारों में से एक, जो मुख्य रूप से सावन

भारत में नागों को केवल डरावने जीव के रूप में नहीं बल्कि खेतों की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल और पर्यावरण संतुलन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है। इस अवसर पर लोग नाग मंदिरों में जाकर दूध अर्पित करते हैं, घरों के मुख्य द्वारों पर नाग का चित्र बनाते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति और जीव जंतुओं के प्रति सह अस्तित्व, प्रेम और सम्मान की अनूठी भावना का प्रतीक है। 7:32, एक नजर के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।

7:41 फिलहाल वक्त है साहित्य सरिता का, जिसके अंतर्गत आज मैं बात करने वाली हूँ अमृतलाल नागर के विषय में। हिंदी साहित्य जगत में अमृतलाल नागर एक ऐसे अद्वितीय कथाकार के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा और लोक संस्कृति का अत्यंत सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। वे प्रेमचंदोत्तर युग के उन शीर्षस्थ कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने उपन्यास और कहानी विधा

को एक नया आयाम दिया। नागर जी ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से लखनऊ की तहजीब, वहाँ के आवासी जीवन और भारतीय समाज के विभिन्न रंगों को अत्यंत जीवंतता के साथ उकेरा है। नागर जी की साहित्यिक साधना की सबसे बड़ी विशेषता उनका यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था। जनसाधारण के लेखक थे। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों में भी कल्पना के साथ साथ प्रामाणिक इतिहास और लोक विश्वासों का अद्भुत मेल किया। उनकी भाषा अत्यंत सहज, स्वाभाविक, मुहावरेदार और जीवंत थी। अमृतलाल नागर ने उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में लेखन किया। उपन्यास की यदि मैं बात करूं तो बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस, नाच्य बहुल गोपाल, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर और महाकाल, सेठ बांकेलाल, टुकड़े टुकड़े दास्तान। कहानी संग्रह आत्माराम, एक दिल हजार अफसाने, मानसा पर आधारित कहानियां। उन्होंने कई नाटक और रेडियो रूपक भी लिखे। इसके अलावा चकल्लस जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके हास्य व्यंग को भी बढ़ावा दिया। उन्हें उनके उपन्यास अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें भारत भारती जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। अमृतलाल नागर केवल एक कथाकार नहीं थे, बल्कि वे भारतीय समाज के कैसे चितेरे थे जिन्होंने आम आदमी के आंसुओं, उसके मुस्कान और उसकी संस्कृति को अपनी लेखनी के माध्यम से अमर बना दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, किंतु उनकी कृतियां आज भी हिंदी साहित्य के आकाश में ध्रुव तारे की तरह चमक रही हैं और पाठकों को हमेशा प्रेरित करती रहती हैं और आगे भी इसी तरह से प्रेरित करती रहेंगी। फिलहाल 7:44 और वक्त है एक खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने।

मोहम्मद इरफान की खूबसूरत आवाज में फिल्म यारियां से बारिश गीत आपने सुना, जिसके गीतकार और संगीतकार हैं मिथुन। फिलहाल 7:51 और बेहद खूबसूरत नगमा आप सबके लिए सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

0: উৎপল ফকির ও সহজ মায়ের দ্বৈত কণ্ঠে এই লোক সঙ্গীতটি দিয়েই শেষ হলো আজকের নানা রঙের গান। পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা একটু পরেই শুনতে পাবেন।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
3: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।

0: प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
1: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के लक्ष्य होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश

0: मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
1: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई

0: है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
1: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms, directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raje Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. More from our correspondent.
3: The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions planned around Independence Day. The operation led to the detention of over 200 people across 14 states, including 62 from Uttar Pradesh, 52 from Haryana, 51 from Delhi and 44 from Punjab. Substantial recoveries including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from ISI-funded group. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. SBN has also been playing local conduits to recce police, defense and religious sites and to install CCTV cameras for espionage. More than 80 FIRs and over 200 arrests linked to this network have been made so far. With Aman Yadav, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: The government has approved

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को

0: उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान

0: नहीं लाया गया, ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को श्रोताओं को बताना चाहूंगा। जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपनी ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
1: जी बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है, आप आम उपभोक्ता इसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: मुकेश जी ये अब दोबारा पूछ लीजिए, कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज।
1: जी ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: अच्छा, हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर, उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे FBO क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके। उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्विवेलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है FBO को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का। उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा। तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है। मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारा उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कई भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं। हम सुओ मोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं FBO को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी। रमा शंकर जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी नमस्कार
1: जी, बताएं क्या सवाल है आपका?
3: हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेबल है जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है?
1: जी कविता मैम बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका?
2: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रासूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके, उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है। अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए, उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं। से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं। अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा, उस तरीके से हम

0: क्लेम्स ले सकते हैं. वायरस हम ये डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा. वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए. डॉक्टर रिकमेंडेड है उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते हैं, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके.
1: जी बिल्कुल. और अनुपम जी आपसे पूछना चाहेंगे कि सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है? पिछले एक साल में सीसीपीए ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं?
2: सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी. पिछले 5 वर्षों में इन्होंने इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू किए हैं.
1: बहुत बड़ी कार्रवाई.
2: और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं जहाँ कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है सबसे बड़ी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
1: बैनर लगे होते थे.
2: इनफैक्ट यदि आप सारे जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइजमेंट करते थे यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी. तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन लिया गया जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं. दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में वो है डार्क पैटर्न को लेकर. डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज़ हम ना करना चाहें हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है
1: जी.
2: तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है. तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसमें जेप्टो है, इंडिगो है, बुक माई शो, स्पाइस जेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है. एक जो और बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे उन सब पर भी कार्यवाही की गई है. तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो सीसीपी ने पिछले वर्षों की है.
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल. अमित जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
3: जी नमस्कार. मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन हिसाब से खपत के हिसाब से जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है. इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? ऐसे इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है.
1: जी कविता मैम आपसे सवाल है ये.
0: जी बताइए प्लीज इसको.
1: ये दूध इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है. तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है ये कहना चाह रहे हैं.
0: अच्छा दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है करके.
1: जी जी जी एफएसएसआई का.
0: हाँ जी देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है. वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एफबीओ उसको कंप्लाई करना पड़ेगा. हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है. हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं उसमें एफबीओ को पीनलाइज नहीं करते. उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं. अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं. अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हजार्डस सब्सटेंस मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे. इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है. सैंपल उठाना जरूरी है. हमको रिपोर्ट एनुअली 2 बार जमा करना है. फूड बिजनेस ऑपरेटर पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर

0: डिजाइनेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते रिपोर्ट देने का, उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधर है करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है। मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे व्हाट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है। तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
2: यह आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी।
2: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
2: उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज़्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4,000 से ज़्यादा NRIs हैं। अब इसमें जो VC फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर, मतलब NRI जो बाहर से इंडिया आए सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो USA, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे VC के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
1: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: हेलो, नमस्कार
1: जी। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी,
3: सवाल जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से
1: जी।
3: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है
1: जी,
3: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके समाधान का क्या, मतलब तरीका क्या है? मतलब
1: कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
0: हाँ जी, क्वेश्चन ये है, मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है और ड्यूरेशन को ऊपर हो गया, वही उनका सवाल है ना?
1: जी,
0: हाँ जी, मतलब एनी प्रोडक्ट, मतलब शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, 1 साल और 6 मंथ्स, वो FBO टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो शेल्फ में, मतलब वो रिटेलर भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस. ये कंज्यूमर का भी बहुत

0: इम्पॉर्टेंट रोल है, हम लेबल नहीं देखते जनरली. अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है, मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके. इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेज प्री पैकेज्ड फूड का लेबल का वो है, कुछ टैम्पर बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है, इसका पनिशमेंट भी है.
1: जी अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
2: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनकी भी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना
1: जी.
2: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915-1915 है, यह टोल फ्री है
1: जी.
2: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है
1: जी.
2: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है. व्हाट्सएप नंबर है 8800-1915-8800-1915. ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है. हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें, यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं. और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है. और पिछले एक वर्षों में NCS के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है
1: जी. और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से. उन्होंने सवाल किया है नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी आपसे सवाल ये रहेगा.
0: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा. इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं. फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है, अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसिरॉल करके, उसका प्रेजेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम. और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कंपोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं. इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का. एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ. पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है. सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके. फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये अनलॉग है और पनीर है. इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है. अगर लोगों लैक्टोज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग. फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को.
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हैलमार्क है ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
1: जी.
2: इसमें बेसिकली तीन निशान है, एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है. दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है।

0: ये बताता है। तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये BIS केयर ऐप, जो एक BIS के ऐप में है, उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा। तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज़ खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे
1: जी,
0: वो BIS का हैलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद आपका।
1: जी सवाल पूछिए।
2: जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS पे हम क्या बोलते कंप्लेंट करते या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: जी अनुपम जी
0: पूछिए। आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर फोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, यदि कंपनी में भी आप फोन नंबर है उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहां कीजिए, वहां आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है, आप वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं सिर्फ एक फोन पर और अपनी भाषा में हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं।
1: कि बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही है जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
3: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है, उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं। और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा पॉस्कॉफ पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड, अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए, इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और पोस्ट कॉस्ट पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप। हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर, अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन ले लेंगे।
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
0: पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है, उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशन देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियाँ उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
0: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है।
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
3: एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का, लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं।

0: क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर. सो कंज्यूमर का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है. लेबल में क्या दिया है, हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं. आजकल हम बताते हैं, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए. सर्विंग साइज एक पैकेट में, चिप्स में चार सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए. ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से. अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच
1: जी कविता जी, समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए. तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया.
2: धन्यवाद.
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

0: ভারতে অর্থ প্রেরণ করার সুযোগ পাবেন। অনুরূপভাবে অন্য দেশের ডাক বিভাগের সঙ্গে যৌথ ভিত্তিতে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের দেশে অর্থ প্রেরণের সুবিধা দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওমানের সঙ্গে হরমুজ প্রণালী নিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ে তারা একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে বলে ইরান জানিয়েছে। তেহরানে সাংবাদিকদের ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘি বলেছেন, জাহাজ চলাচলের রুট নিয়ে দুপক্ষের সমঝোতা হয়েছে। পাকিস্তানে বন্যা দুর্গতদের আবাসন নির্মাণের বরাদ্দ অন্য খাতে ব্যয় করা সংক্রান্ত সে দেশের সরকারের সিদ্ধান্তে বিশ্বব্যাংক গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানের গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, বালুচিস্তানে বন্যা দুর্গতদের জন্য বহু কোটি টাকার আবাসন তহবিল পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে। তামিলনাড়ির জন্য কাবেরী নদী জল ছাড়ার বিষয়ে কাবেরী জল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ CWM এর নির্দেশ মেনে চলার জন্য সুপ্রিম কোর্ট কর্ণাটকে নির্দেশ দিয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর আগামীকাল ঝাড়খণ্ড থেকে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে। বিহার, ছত্তিশগড়, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এবং সংলগ্ন বাংলাদেশ ও উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপটি ক্রমশ উত্তর থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সর্বশেষ রেডার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এটি শান্তিনিকেতন থেকে দক্ষিণ প্রান্তের কাছাকাছি বাঁকুড়া থেকে 70 কিলোমিটার এবং পুরুলিয়া থেকে 130 কিলোমিটার পূর্ব উত্তর পূর্বে অবস্থান করছে। আগামী 24 ঘন্টা এতে প্রাথমিকভাবে উত্তর পশ্চিম ও তারপরে পশ্চিম উত্তর পশ্চিমে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপর দিয়ে ঝাড়খণ্ড বিহারের দিকে অগ্রসর হবে বলে আবহাওয়া দপ্তরের অনুমান।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে সর ফিরোজি। भारत में स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों के आवागमन के प्रबंधन के लिए ओमान के साथ समझौता किया। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
2: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान ISI समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले CCTV कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और ISI समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, IED और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: देश के आज़ादी का जश्न मनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन इंडिया डे परेड ने न्यूयॉर्क शहर में प्रवासी भारतीयों के योगदान और देश की विविधतापूर्ण संस्कृति की झलक पेश की। लगभग 2 लाख लोगों ने परेड में हिस्सा लिया या फुटपाथों पर भीड़ लगाई और मेडिसन एवेन्यू पर जश्न के रास्ते में तिरंगा लहराया। ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की ओर से हर साल आयोजित होने वाली परेड का 44वां संस्करण था। इस तरह के भारतीय आयोजन में हिस्सा लेने वालों की संख्या के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी परेड बन गई है। परेड में 36 झांकियां थीं, जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ भारतीय अमेरिकी व्यवसायों, मीडिया और NGO का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उधर इसराइल में भारतीय समुदाय ने जाफा के सेंट एंथनी गिरजाघर में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन कर देश के साथ अपने गहरे जुड़ाव को दर्शाया। शनिवार को गिरजाघर में कोंकणी समुदाय द्वारा आयोजित एक समारोह में भारतीय कोंकणी समुदाय के लोगों ने कन्नड़, कोंकणी, गोवन और हिंदी भाषाओं में शानदार गायन और नृत्य प्रस्तुतियां दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित खतर में से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से खतर में भारतीय समुदाय के लोगों को खतर

0: पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। एक रिपोर्ट।
1: संचार मंत्रालय ने कहा कि ये सेवा सीमा पार से धन भेजने के लिए एक त्वरित, सुरक्षित, सुविधाजनक और सुलभ चैनल प्रदान करती है। इससे विशेष रूप से कतर में रहने वाले बड़े भारतीय समुदाय और भारत में उनके परिवारों को लाभ होगा। ये पहल डाक नेटवर्क की व्यापक पहुंच को भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के साथ जोड़ती है। इससे सीमा पार से धन भेजने के लिए एक कुशल और सुविधाजनक चैनल प्रदान किया जा सकेगा। मंत्रालय ने बताया कि ये सेवा कतर पोस्ट, इंडिया पोस्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के इंटर कनेक्शन प्लेटफॉर्म UPI और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL के सहयोग से विकसित की गई है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: वॉशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर के एक नए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार श्रीलंका में 79% लोगों ने भारत के प्रति अनुकूल राय व्यक्त की है। इस वर्ष फरवरी से मई के बीच 36 देशों में 42,000 से अधिक लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षण में भारत की वैश्विक छवि काफी सकारात्मक नजर आई। इसे दोनों देशों के मजबूत क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों से जोड़कर देखा गया है। वर्ष 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत की वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं से भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: यूएन मिशन इन साउथ सूडान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जुबा में 210 भारतीय शांति सैनिकों, जिनमें 6 महिलाएं और 7 स्टाफ अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन मेडल प्रदान किए गए। मिशन ने इस भारत के ब्लू हेलमेट्स के लिए गर्व का क्षण बताया। मिशन ने कहा कि संकट, चिकित्सा आपात स्थितियों और जीवन बचाने वाले अभियानों के दौरान भारतीय शांति सैनिकों का साहस और मानवीय संवेदना लोगों की जान बचाने और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में वर्दीधारी कर्मियों का दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। वर्तमान में भारत विभिन्न देशों में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 4,200 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मी, जिनमें 155 महिलाएं शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। राष्ट्रपति सचिवालय ने बयान में कहा कि समारोह के दौरान नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाली सेना तथा नेपाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: तेहरान में पत्रकारों से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि जहाजों के आवागमन के मार्ग के नक्शे को लेकर सहमति बन गई है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये समझौता अमेरिका की अपेक्षाओं को पूरा करेगा या नहीं। ये घोषणा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के लिए 60 दिन की बातचीत की अवधि समाप्त हो रही है। समय सीमा बढ़ाने के बारे में कोई सूचना नहीं है और दोनों पक्षों के बीच मतभेद अब भी बने हुए हैं। 28 फरवरी को ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। संघर्ष से पहले विश्व की करीब 20% तेल आपूर्ति इसी मार्ग से होती थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और पश्चिम एशिया के वार्ताकार जेरेड कुशनर ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। इससे एक दिन पहले उन्होंने मिस्र में फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठन हमास के प्रमुख खलील अल हैया के साथ निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर बातचीत की थी। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। उन्होंने धमकी दी कि अगर मस्कट से इस अहम समुद्री रास्ते पर वॉशिंगटन के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। गोल में भारत के साथ

0: टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली तथा सिमन सिंह और कविप्रिया सेल्वम की जोड़ी ने महिला डबल्स तथा MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाक घरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। और गोल्ड क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। इंडिया डिसमेंटल्स ISI बैक टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे, अरेस्ट्स ओवर 200 ऑपरेटिव्स। इंडियंस इन कतर कैन नाउ सेंड मनी होम थ्रू UPI फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेस। Over 200 Indian peacekeepers deployed with UN mission in South Sudan awarded prestigious medal for exceptional service. Iran reaches agreement with Oman to manage transit of ships through Strait of Hormuz. And in men's cricket, India take 178 run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gali Test. India destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day and also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah has informed that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. More from our correspondent.
2: The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions planned around Independence Day. The operation led to the detention of over 200 people across 14 states, including 62 from Uttar Pradesh, 52 from Haryana, 51 from Delhi and 44 from Punjab. Substantial recoveries including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from ISI-funded group. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. SBN has also been playing local conduits to recce police, defense and religious sites and to install CCTV cameras for espionage. More than 80 FIRs and over 200 arrests linked to this network have been made so far. With Aman Yadav, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
1: India has reaffirmed a people-centric and humanity-first approach to BRICS collaboration guided by Prime Minister Narendra Modi's vision. Secretary, Economic Relations in the Ministry of External Affairs, Sudhakar Dalela, today said, during its BRICS chairship, India has placed people at the center of collective efforts. He made the remarks while addressing the BRICS Civil Forum 2026 in New Delhi.
3: While our economic, technological and sustainability goals are indispensable, the ultimate resilience of the BRICS partnership depends on the invisible threads of trust and mutual respect that bind our societies together. Civil society engagement is therefore not a secondary track, it is a primary and an enduring mechanism for building lasting partnerships and friendships. This year is especially significant for BRICS as we are marking 20 years of our shared journey since the first BRIC BRIC Foreign Minister meeting in 2006 in New York. 2 decades in which we have grown into a strong collective voice of developing economies at a global stage.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉ. हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के

लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।